0: सम्पत्ति कर तिरेको रसिद कर्मचारी परिवार को हक में संबंधित कार्यालय को सिफारिश चाहिन्छ अरु केही थप भए कार्यालयले बताइदिहाल्छ नि
1: पाँच मोबाइल 98612-20437
2: अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो